प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान में बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं कोई भी नहीं जो बतलाए।

0: Version 2.0.
1: उनके अंदाज़े करम की पीर नसीरुद्दीन नसीर लिवा नुसरत फातेह अली खान के अफवा मशहूर असरगदा कव्वालिये।

कितने बातें के खवाए की बाविया पंडित के आदि फवालवे मी इतिहास हतरवना हर नुके फिल्म लक्ष्या के कितने बातें के अस्तु लवे किया फवा एकुस्टिक खवालवे मी लव तैयार को फवनी वरंग आदा के मडुमैतिरी गीटा आदि पियानो म्यूजिक आयकुगा मी के सबबुं बाविया के अडुगे इहुसास्ता वरा फुरी हमें फेनिगेंदे जावित अख्तर लिव्वाफवा असरुग दळेमुगे इहुसास्ता बाविया पंडित के मडुमैतिरी आदि असरुग दाडुं वरा फुरी हमें गेनिस्तीफवे मी लवे की देहास विहिवना हर कोविड नवारागे फुरबंदु नुमत लॉकडाउन तेरेगा बाविया पंडिता पियानो कुलुं तेरिया अविजीत सतपति गुडिगें क्वारंटीन सीरीज के दशुनेरुनु खावा लवे गेगति बेंजे हुनु दुवसवरु माजी के हंदांतं आकुरुम के मकसद को फेद्दी मी लवेगा पियानो कुले फवनी अविजीत सतपति बाविया के इंडिया के मशहूर लव क्यों तेरिये एनाकी बॉलीवुड फिल्म तक लवकिया तिनमुगे इतुरुं अमिल म्यूजिकी उफेद्दुन तक यूट्यूब का खावा लवतकियागें बोडु मकबूल कमें होदा फवा फन्नाने बाविया आमुंगे तेरेग मशहूर वेगें दियाई इंडियन आइडल सीजन 4 गे फाइनलिस्ट गे गोतुगा एनाकिया तिफवा मशहूर बॉलीवुड लवतवगे तेरेग देहास बारवनाहरुगे फिल्म सन ऑफ सरदारुगे रानी तुमे राजा अधिदेहास अनुवनाहरुगे व्हाट्स योर राशि फिल्मुगे लवतंगिमेने

ती एहुं तेरिंगे एम मकबूल फन्नानुंगे लवत एंगिनी की हावरका ए फन्नानुंगे मौदुमा तेंगिनी की हावरका